वस्तु ले पासे पावे, एक बस्त कारण बेखूड गवावे। एक पी ना दे दास पी हिरले, ताओ मुड़ा कहा करी। जेस ठाकर सुनाई चारा तक कीजे साध नमस्कार। जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सूताऊ मन उठा। जे जन अपना हुक्म आया, सर्व तो नानक तिन पाया। अगण दसाओ अपनी देरा, खात पीत परते आनंद उलास। अपनी मान कस्बा और साले, अगे अन्नी मन रूस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए, भर उसका विश्वास ना हो। जिसकी बस्त से आगे राखी, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक पात माया की हीद, सर पर उमन जान नेत। बिर की साया सुरंग लावे, उबन सुयो मन पुस्तावे। जो दिशु सु चलन आर लपट रहे, उत अंध अंधार बैठाऊ। सो जो लावे नेह, तक वाथन आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सुभाया, मिथ्या में ममता माया। मिथ्या राज उगण तन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ अस्ति असु वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता। मिथ्या त्रू मोह अभिमान, मिथ्या आप सुपर करत गुमान। स्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या सरवण पर निंदा सुन, मिथ्या अस्त पर दर्ब को हिर। मिथ्या नेत्र पेक पार त्रै रुपाद, मिथ्या रसना पूजन न स्वाद। मिथ्या चरण पर बेकार को ताव, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव। मिथ्या तन आई पर उपकारा, मिथ्या बास ले तो बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सा पहे सफल दे, नानक हर हर नाम ले। बिरती सागत की यार जा, साज बिना कहूत सूचा। बिरता ना बिना तने अंद, मुख आवत ताके दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरता, बेहाय मेघ बिना जो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपण के नरात दाम। तन तन ते जन जय कट बस्यो, अर नाउ दान ताके बल बन जाए। रहत अवर कसवर कुमावत, मानी प्रीत मुखोंगन लावत। जानन हार प्रभु परबीन, बार पीघ न खाऊ पीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्म मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पानी तिन प्रव जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जान, पणा किया आपह मान। आपह आप करतन बेरा, किते दूर किसे दूर जनावत। किसे बजावत नेरा, पाव सियाण सगल तिरहत। साके जाने आत्म की राहत, जिस पावे तिस ले लड़ लाए। तान तनंतर आसमाय सो सेवक, जे कृपा करी निमक निमक। जप नान करी सलोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अमेव। नानक प्रभु शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जी प्रसाद सती अमृत खाए, ते ठाकर को रखमण माए। जी प्रसाद सुगंध तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै। जी प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन मंदर। सदा मन अंदर जी प्रसाद, ग्रह संग सुख बसना। आठ पैर सिमरू तिस रसना, जी प्रसाद रंग रस भोग। नानक तिसदा त्याय ध्यावन जोग। जी प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावै, तिसे त्याग कत अवर लुभाव। जी प्रसाद सुख से सोई जाए, माने आठ पैर ताका जास गवी जय। जय प्रसाद तो सब को माने, मुक्ता को जास रसन बखाने। जय प्रसाद तेरो रहता तरु मन, सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गय मान पावे, नान पात से ती कर जावे। जय प्रसाद अरु कंचन दे, ही ले लावो ते राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा उल्ला रह, तो मन सो पावे हार हार जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके, मन सरनी पर ठाक प्राप्त आके। जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे, मन सा सा सिमरो प्रभु उचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद भूखण पहरी जय, मन ते सिमरत को आलस की जय। जय प्रसाद स्वस्थ सवारी, मन ते प्राव कौ कबू ना बसारी। जी प्रसाद बा मिलख तना, राग प्रोय प्रव अपने मना।
ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਏ ਊੜਤ ਬੈਠਤ ਸਤ ਸੇ ਤੇ ਆਈ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਏ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ ਆਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਬਿਵਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਚਿਤਾਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੂ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੂ ਸਦਾ ਨੂਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਜਾ ਸੂ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੋ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਕੇ ਬਿਸਮਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਤ ਕਰ ਚਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਪੂਰਨ ਫਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਲਮਣੋ ਬਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਉ ਜਾਵ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੇ ਜਾਣ ਮਨ ਸਦਾ ਜੂਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਰਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਾ ਤੂਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪਹਿ ਕਸੁ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਿਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕੇਨ ਕਹਿ ਕਸੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੀ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਜਣਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਤੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਬਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁਜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਉਤਨ ਬੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਉਪੁਰ ਜਤਨ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੇ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁਲੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਰ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੰਤਰਾ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਕੀ ਦੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਣ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਦੋਂ ਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾ ਮੀਰ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਏ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਏ ਅਵਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੇ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਆਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਆਏ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਾਏ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਣ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਾ ਕੁਲ ਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਣ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਤਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦਿਆ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਥਾ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨੇ ਕਸਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤਹੂਤ ਨਿਆਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੋਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵਾ ਸੋਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਸਹਿ ਸੋਈ ਪਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਣੂ ਅਰਨ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦਨ ਜਨ ਹੈ ਜੇ ਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਬ ਗਿਆਨੇ ਸਾਧਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
ਸਾਧਕੀ ਉਪਮਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬਿਨ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੀ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਕੇ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਨਕੀ ਲਸਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਦਾ ਨਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਤੀਰ ਚੀਕ ਜਿਉ ਬਸਤਾ ਕਉ ਕਉ ਦੇ ਕਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਏ ਗਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਜਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਤਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੁ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਹੀਂ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਲ ਕਿਰੀਨਾ ਤੁਮਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਾਬੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਸ ਪੁਰਾਣ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੋਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਪੂਜਣ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੋ ਮਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਤੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਤਾਵਤ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਉਈ ਸੁਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਭਲ ਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਦਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਬੋ ਤਿਆਗ ਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬੇਨਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ ਅਚਿੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਆਦੇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇਦ ਅਖਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤਣ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰਾਥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਣੀ ਸਲੋਕ ਔਰ ਤਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰਨਾਮ ਸਰਬ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਭਗਵਾਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪਰਸ ਸਗਲ ਨਸਤਾਰ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਈ ਰਸਣਾ ਪਰਸ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਸ ਪਾਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਣ ਭੇਖੇ ਨੇਤਰ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ ਕਰਨ ਸੁਣੇ ਕਾਉ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੇ ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਣਾ ਮਨ ਤੈ ਟਰੈ ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਗ ਤੇ ਰੈ ਤਨਾਨ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੂਐ ਸਾ ਪਰਸ ਬਹਿ ਸੁਣੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਸਣ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਵੈ ਨਹਿ ਕਰਮ ਤੇ ਸਬੈਸ ਨੂੰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਕਾਉ ਫਲ ਕੀ ਸਾਨੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ ਮਨ ਧਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ਸਭ ਉਪਰ ਓਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪ ਦਰਣ ਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਨਾਨਕੂ ਬੈਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ
मन ते बिन से सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सासं पापा मलकूवै तिस भगवती की मत उत्तमोवै। भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पे बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म है सो दे राम नाम सार राज पीवी उस पंडित के उपदे जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण सिमरत बूजै मूढ़ सुख मैं जाने अस्तूढ़। चौ वरना कौ दे उपदे नानको पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान चौ वरना मैं जपे कौ नाम जो जो जपे तिसकी गा तुए सा सं पावे जन कुए कर कृपा अंतर वरतारै पर प्रेत मुद पात्र कवतार। सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जोत किते ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम ते नदरी है दाद संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सूदा दरगह परवान अपने दास कहो आप कृपा करै ते दास कहो सब सो जी परै सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा अर्क तैसा सुसोग सदा अनंत नै वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा महान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो विरताई साई जुगत नानक पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म की सगले ठाओ जित जित कर राख तैसा तिन नाव आपे करन करावन जोग प्रपावै सोई फणोग पचरुआ पोए अनंत तरंग लखे न जाय पर ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै नेहा। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंतन पारावार नानक रचना प्रवरची पौ विद्यनक प्रकार अष्टपदी कई कोड़ हुई पुजारी कई कोड़ आचार व्यवहारी कई कोड़ पई तीर्थवासी कई कोड़ बन पर मैं उदासी कई कोड़ वेद के स्रोते कई कोड़ तपी स्रोते कई कोड़ आत्म ध्यान तार है कई कोड़ कब का विचार है कई कोड़ नवतन नाम त्यावै नानक करते कंतन पाव। कई कोड़ पय अभिमानी कई कोड़ अंध अज्ञानी कई कोड़ कृपण कठोर कई कोड़ आपे ज्ञातम निकूर कई कोड़ पर दर्भ कोय रह कई कोड़ पर दुखना करे कई कोड़ माया सरमाय कई कोड़ परदे परमाहि जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोड़ सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोड़ पंखी सरपो पाए कई कोड़ पाथर बिरख निपजाए कई कोड़ पावन पानी बैसंतर कई केड़ कोड़ देश भूमंडल कई कोड़ ससियर सूर निखत्तर कई कोड़ देव दानव इंदर सिर सत्र सगल समगरी अपने सूत तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस नस्तार कई कूट राज स्ताम सात कई कूट वेद प्राण सिमरत अर साथ कई कूट कीरतन सुमुंद कई कूट नाना प्रकार जन कई कूट किए चिर जीवे कई कूट गिरी मेर सुवर्ण थीवे कई कूट जख किन्नर पिशाच कई कूट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरे सब उते दूर नानक आप अलिप रहा भरपूर कई कूट पताल के वासी कई कूट नरक सुरग निवासी कई कूट जन्म जीवै मरै कई कूट बवजोनी फिरै कई कूट बैठते ही खाए कई कूट काले थक पाए कई कूट किए तणवंत कई कूट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक साहब किस प्रभ कह हाथे कई कूड़ पई बेरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कूड़ प्रभ कहो खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लांते कई कूड़ दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिलियो प्रभ अविनाश कई कूड़ मांगे सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
जिन कोई आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कूड़ खानी हर खंड कई कूड़ आकाश ब्रह्मंड कई कूड़ होए अवतार कई जोत कई नू विस्तार कई बार पस रूप सार सदा सदा एक एक ओंकार कई कूड़ कीने बहुपात का रब ते होई प्रमाय समाता कांतन जाने कोई आपे आप नानक प्राप सोई कई कूट पार ब्रह्म की दातिन हो त्या तुम पर गाय कई कूट तात के बीती सदा निहारो एको नेत्र कई कूट नाम रह पीवे मर पै सा साधी जीवे कई कूट नाम गुण गावे आत्मरा सुन सहज सुख सहज समाव अपने जन को सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाई कोई नानक तिस बलहार नै जल तलमई असोई अष्टपदी करण करावन करना जोग जो तिस पावे सोई ओ खिण मैं था बहुता अपनहारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अणक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी बड़े आई नानक सामे रहा समाय प्रा पावे मान गत पावे प्रा पावे ता पा तत्रावे प्रा पावे बिन साच रखे प्रा पावे तार गुण पाखे प्रा पावे ता पत तो दारे आप करे अपन विचार दुहास रिया का आप सो अमी खेले विकसे अंतर जाम जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानक ते क्या होया वै जो तिस पावे सोई करावे इसते हाथ होए ता सब किसली जो तिस पावे सोई करे अणजानत बिख्या मैं रची जी जानत अपने आप बचे पर मैं पूला दै दिसतावे निमख मैं चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम ले खिण मैं नीच कीड़ को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जा का दृष्ट कसुनावै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जा को अपनी कृपा करे अपनी करे बख्शीस ता काली खाना गणे जगदीश ज्यो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बलनाए सहात करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई फुणतीयो कबू ऊंच नीच मैं बसै कबू सूग हर करंगा सह कबू निंद चिंद व्यवहार कबू उबा कास पायाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानकिया मिलावन हार कबू नृत करे बहुपात कबू सोई रहे दिन रात कबू महाक्रूर बिकराल कबू सर्ब की उतरवाल कबू होए बे बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अपकीर्त मैं आवै कबू पला पला कहावै जो प्राव राखे ते भी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बखयान कबू मूण तारी लावे त्यान कबू तड़ तीर्थ स्नान कबू से साधक मो ज्ञान कबू कीट अस्त पतंग होए जी आणक जोन परमे परमे आ नाना रूप जो सवागी दिखावै जो अर जो प्रा पावे तवै नचा जो तिस पावे सोई हुई नानक दूजा वरना कोई कबू सा संत ए पावे उस स्थान ते बोर नावै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म के संग ज्यो जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गुण पाए विश्राम नानक प्राप के सत कुरबान सलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप नवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसकी अंतर आए विमान सो नरक पाती ओ सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो उत्पिष्टा का जंद आप को करवंत कहावै जनो मरे बह जोन परमावै तन भूम का जो करे गुमान सो मूर खांदा आग्ञान कर कृपा जिस कहर दै गरीबी बसावै नानकी हा मुक्त आगे सुख पावै तनवंता होई कर गिरबावै तृण सुमण का संगना जावै बहु लस्कर मान ऊपर करे आ पल पीतरता का हुए बिना साव ते आप जाने बलवंत खिण मैं हुए जाए पसमंद किसे न बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करी खुआरी
गुर प्रसाद जाका मिट्टी विमान सूप जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे अवतारे सरम पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या तो करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे आपस को जो पड़ा कहावे तसे पलाई निकटने आवे सर्ब की रेण जाका मन हुई कहो नानक ता की निर्मल सुई जाब लग जाने मुझते कस हुए तब इसको सुग नाई कोई जाबे जाने मैं किस करता तबला गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तबला ने चलना चीत जब लग मुह मगन संग माए तब लग तरम राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक सुटै सहज खटै लक उठतावै तृप्त न आवै माया पास पावै अणक पू बिख्या के करै नै तृप्तावै कप कप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरते सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बुढ़पागी किसे प्राप्त होए करन करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावण करने हार उसके आदका विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप्रभ सोए जो किस किनो सो अपने रंग सब ते दूर सब कै संग बूझै देखे करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक साधी रहा समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनो आपन विस्तार सब उसका वो करने आर उस ते पिन कहो कैसो हुए थान तनंतरे कैसो हुए अपने चलते आप करने यार कवत करे रंग पार मन मैं आप मन अपने माय नानक कीमत कह न जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद कने वखियानी सच सच सच सब कीना कूट मदे कने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी काढ़ काढ़ सुनी सरवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र उपनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर है सो जन उधर नहार संत के निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपति संत के दुखण हार जा कटै संत के दुखण जमते नहीं सुटै संत के दुखण सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुखण मातु ए मलीन संत के दुखण सोभा तेहीन संत के अते को रखे ना कोई संत के दुखण थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखण ते मुख पवै संतन कै दुखण काग जो लवै संतन कै दुखण सर्प जोन पाए संत के दुखण तरगत जोन करमाए संतन कै दुखण तृष्णा मैं जले संत कै दुखण सब को सड़ै संत कै दुखण ते सब जाए संत कै दुखण निजन चाहे संतो की कहु थाउ को नाए नानक संत पावे ता उइ पी गत पा संत का नंद कुमात ताई संत का नंद घंटे का न पाए संत का नंद कुमात आरा संत का नंद परमेश्वर मारा संत का निंदक राय तीन संत का निंदक दुखी आर दीन संत के निंदक कौ सर्व रोग संत के निंदक कौ सदा भेजोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उस पा उस का पी हो मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी कौ डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख ते डरे संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावे ता लई मलाए संत का दुखी अद बीत टूटे संत का दुखी किति काज ना पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते तो था जो साज बिना मृत की लो था संत के दुखी की जड़ किस नाय आपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को अवर न रखना नानक संत पावे ता ले ओबार
संत का दुखी एव बिललाए, जो जाल बिहुण मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक ईतनी त्रापै। संत का दुखी सुटी अकेला, जो गुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म तरैत, संत का दुखी सद मिथ्या कैत। किरतनंद का तुरी पाया, नानक जूत भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख ना त्रिष्टे कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। पाया कीर्तन मेटे कोई, नानक जाने सचा सोए। साब काट तिसकी करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, से त्याग साह ग्रास। साब कहवरते का किया, जैसा करी तैसा कुतिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करी तिसे अपन नाम देई, बड़भागी नानक जन से श्लोक। तजो सियान सुरजना, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखू, नानक दू परम पव जाय अष्टपदी। मानुक की टेक बिरती सब जान, देवन को एक भगवान जी। कै जिसके दिए रहे हकाय, बहुन तृष्णा लागे आए। मारे राखी को आप, मानुक है किसना हाथ। तिसका कंबू सुखोए, तिसका नाम राखन परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागे कोए। उस्तुत मन मैं का निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनू पेक ठाकुर का रंग, सा संग बिनसे सब संग। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपे हर बिंद। कर हर कर्म सरवण हर कथा, हर दरगह नानक जुड़ मथा। बड़भागी ते जन जगमाय, सदा सदार के गुण गाए। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणे संसार। मन तन मुख बोले यार मुखी, सदा सदा जन ते सुखी। एको एक एक पैसाने, इत उतकी ओ सोजी जाने। नाम संग तिसका मन मान्या, नानक तने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजा, तिसकी जानो तृष्णा बुझा। सा संग हर हर जस कैत, सर्व रोग त्यो हर चन रैत। अन दिन कीर्तन केवल बखयान, ग्रह मैं सोई निर्वाण। एक ऊपर जन जन की आसा, जिस जन की आसा ते की कटिए जम की पासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागै दू। जिस को हर ब्राह्मण चित आवै, सो संसेला नहीं डलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करी, सो सेवक के तै डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्ज में आप समाया। सूदत सूदत सूद सिज्या, गुर प्रसाद तत् सब उज्या। जब देख्यो तब साब के समूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। नै के जन्मे नै किस मरे, आपन चलते आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी साब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मैं आप, अणक जुगत राज था पोताप। विनाशी नाय किस कण, तारन तारू ब्रह्मण। आलख अपे पुरख प्रताप, आव जपाए तनानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदरे तिन मंद। प्रभ के सेव सल उदारन, प्रभ के सेव कदुख बिसारन। आपे मेले कृपाल, गुर का शब्द जापे नियाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करी बड़भागे। नाम जप पावे बिश्राम, नान तिन पुरख कहो तुम करमान। जो किस करे सु प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे अर संग। सह सुपाय हुए सूए, करने आर बसाने सूए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माए समाए, कोय सुख निदान उनु बने आए। आप को आप दिनो मान, नानक प्रभ जने को जान सलोक। सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरता चानन हार। जाके सिमरन उदरिये, नानक तिस बलिहार अष्टपदी। टूटी गणन हार गोपाल, सर्ब जी आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माए, ते बिरता कोई नाय।
रेमण मेरे सदार जाव अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कसु ना जे सो प्राणी लोचे कोई तिस बिन नाहि तेरै किस काम हत नानक जापे एक हर नाम रूपवंत हुए नाहि मोहै प्रभ की जो सगल कट सोहै तड़वंता होई क्या को गर्भै जा सब के तिसका दिया दरबै हत सूरा जी को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे कुहु बह दतार तिस दिन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद टुटिया रोग नानक सो जन सदा अरोग जो मंदर को थाम थमण त्यो गुर का शब्द मणे स्थमण जो पकान नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत नस्तरै जो अंधकार दी परगास गुर दर्शन देख मन होए विगास जो माँ उद्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाचो तूर नानकी अर लोचा पूर मान मूर्ख काई बिल लाई है पूर्व लिखे कल के अपाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तुम तसे चतार जो कस करे सोई सुख मान पूला काई फिरी अजान कौन बसताई तरै संग लव टर रास रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माए नान पत सेती कर जाए जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज विमान लो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तूड़ू लाद की संत संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कई सब कोई मुख उजल हर दर गै सूई इव पार विरला वपार है नानक ताके सद बलहार है चरण साध की तुई तुई पियो अर्प साध को अपना जी साध की तूर करू स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड़ भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक बिगण ते साधु रख है हर गुण गाय अमृत राचक है उड़ गई संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया मृत को जिवालन हार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माय पूर्व लिखे का लहना पाए साव के तिसका ओ करना जो तिस बिन दूसरो आ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मले करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नान सोच निर्मल थी आ जंके मन जाके मन कुर की परती ते जने आवे हर प्रभ चीत भग भग सुनिए ते लोए जाके हृदय कोई सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मोकै साची दृष्ट साचा कर सच वर्ती साचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नान सो जन सा सुमाता स्लोक रूप न रेखन रंग के त्रै गुण ते प्रभिन्न तिसे बजाए नानका जस होवै सो प्रसन्न अष्टपरी अविनाशी ब्राह्मण मैं राख मान की तू प्री त्याग ते परे नाय किस कोई सर्व निरंतर एको सोई आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गई सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा कृपा निदान दयाल बख्शंद सात तेरे की चरनी पाओ नानक मन एह अनराओ अनसा पूर्ण सन्ना जो जो कर पाया सोई वर्ण पर जाका नेत्र पूर ते का मंत न जाने और अनदरू मंगल सद जाके सर्व थूक सुनिए करता के राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सरग्रह सत मैं भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक ते सुपुरख काकने अंत न पाया जाकी लीला कीमित नाए सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म कह जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जन दे तन दात नाम त्या वैसे ते गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊच नीत के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बेद किनू विस्तार प्रभ अविनाशी अकंकार नाना चलत करे खिलमाए पूरे ओ पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई साब काट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाम नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
नाम के तारे सिमरत वेद प्राण, नाम के तारे समम ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगल कार, नाम के तारे पुरिया सा पौन, नाम के संग उदरे सुन सरवण, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सा मैं समाणी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पात, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बजाय तसे सा पड़ी, सत नाम प्राप का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दे प्रवेश, सत नृत बूजे जे कुए नाम जब ताकी गत हुई, आप सत किया सब सत आपे जाने, अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने यार, अवर न भूत कर विचार, करते की मित न जाने की या नानक जोत पावे, सो वरते या बिस्मण बिसम पहे बिस्मार, जिन बूझया तिसाया सवाल, प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लय, उए दाते दो कटन हार, जां कै संग तरै संसार, जां का सेवक जन का सेवक सोवड़ पागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, सलोक आद सच जुगाद सच है पे, सच नानक ओसी पे, सच अष्टपदी चरण सात सात प्रसन्न आर, पूजा सात सात सेवदार, दर्शन सात सात पेकण आर, नाम सात सात त्यावण आर, आप सात सात सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सात सात प्रभगता, सुरत सात सात जा संता, बुझण हार कहो सात सब हुई, नानक सात सात प्रभ सोई, सात सुरूप हृदय जिन मान्या, करन करावण तिन मूड पसान्या, जा कह रे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते नरपोए बसाना, जिस ते उपजया तिस माय समाना, वस्त माय ले बहुत गडाए, ताको पे न कहना जाय, बूझे बूझण हार विवेक, नारायण मिले नानके, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवकी राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धार, नानक सो सेवक सा सा सुमार, अपने जन का पर्दा ढाक, अपने सेवकी सर पर राखे, अपने दास को दे वड़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवकी आपत राख, ता की गात मित कोई ना लाख, प्रभ के सेवक कहो कहो ना पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊचते उच, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया, निकी केरी मैं कल राख, पसम करी लस्कर कूट लाख, जिसका सोयन काढ़ते आप, ताको राख दे कर हाथ, मानस जतन करत बो पात, तिसकी करत बिरते जात, मारे न राखी अवर न कोई, सर्ब जिया का राखा सोई, काए सोच करे री प्राणी, जप नान प्रभ अलक वड़ाणी, बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृते मन तन त्रपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किसे अवर नहीं दृष्ट आया, नाम ता नमो रूप रंग, नमो सुखा नाम का संग, नाम रस जो जन त्रपताने, मन तना मैं नाम समान, ऊठ बैठ सूवत नाम कहो, नानक जन की सदकाम, बोले जाजी वद नरात, प्रवे अपने जन किनी दात, करे भगत आत्म कह चाहे, प्रवे अपने सुरह समाए, जो हुआ हो सो जानै, प्राय अपने का हुकुम पसानै, तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कै एक न जानू, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहु नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लह, मन तन अपना तिन जन देह, जिन जन अपना प्रभु पसाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी सरन सर्व सुख पावै, तिसके दर्शन पा मटावै, और सियाण सगली साड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक ते जन के पूजा सद पैर, सलोक
ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸੇਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੀ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਖ ਬਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖ ਕਾਲਤ ਪਲਤ ਸੁਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਮਾਰ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਸਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਧਿਆਵੈ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋਏ ਨੇ ਕੰਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਉਤਪਰਾਵ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲਈ ਬੇਸ ਬਿਸਵੈ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਓ ਅਣਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਪਲ ਜਾਓ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨ

सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है भी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता आपना जिब तिसदी वड्याई ज्यों तिसदी वड्याई ज्योत स्वभाव।

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो से मैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ध्यावें तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर ध्याया जी तिन तुट्टी जमकी फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ ध्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तपे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म ग्रंथा से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करें सोई तुदे आपे सिर सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब साका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जा तो भावे सोई थीसी जो तू दे सोई हां पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछोड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाणे जन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए।

शांति चौपाई अमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब तुम गावो आभाद महे बचावो सुखी बस है मोरो पर बारा सेवक सिख सभा कर तारा मोर अशा निज करद करे सब वैरुण गुवा संग्रह पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अपना त्याऊ जो बर जाऊ सो तुम ते बाऊ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सदर हमारे मारिया भाद मुझे भरह मरण काल का त्रासन भरह उजो सदा हमारे पच्छा श्री तुजो करियो रक्षा राख रियो मय राखण हारे साहेब संसाय प्यारे दीन बंधुष्टन के हंता तुम भरी चतुर्दश गंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सक

काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार सीखो हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन गो सेवकन सुख दियो, सत्रण गो बल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते गुंचरिया स्थूला, सपर कृपा दुष्ट कर भूला, संदन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी,

अब मैं कथा संक्षेपते सबहू कह सुनाए कब बाज दोहरा ठाठ भयो मैं जोर कर बचन गां सिरण आए पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नितुड़ ध्याय हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा कालपुर की देहमो कोटक विशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रूर जरे दोहरा राम कथा युग युग अटल सब कोई भागत नेत सुरगवास रघुबर करा सगरीपुरी समेत चापई जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप दे निकट न आवे विशन भक्त की ए फल होई याद ब्याद शुभ सके न कोई समत सदरा सहस पचामन हाड वधि प्रथम सुख दामन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लो ले सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बात सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गए जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आने

सदगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरुता पाया सहज सेती मन मजिया वधाइया राग रतन प्रवार परियां शब्द गावना।

0: जहे तेरा ना हो ले ले के तर गए ने
1: सच्चे परबुदगार तेरा जस गाजन सफली कर

0: तुझ जिनको से नाम हर के लागे
1: कहे नानक तै सुख हो वातित करे अनहद वाजे
0: अंध सुनो बड़ भागी हो सगल मनोर

0: संत साजन भैंसर से पूरे गुरदे जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे
1: बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद तूरे सलोक
0: पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात
1: सरात दोए दाई दाया खेले सगल जागत चंग

0: जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पितर हजूर जुड़ बैठी साध संगत जी विभागी विभाग जी ने संदा दवाना जहाज ने बरियां गुरु साहिब जी कृपा कर सुन संगत हाज दर प्रवान करन दरों करों गुरु सिख जी नाम दान बख्शन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर आगा। प्रभ जी तू मेरे सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ बिनासी ताकि सेव न बिरती जासी अनंत करह तेरे दासा जप पूरन होई आसा। बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुरु।

प्रभ भय सहाय सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा हो अणा तूण है छुट है निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा मन मह चितवो चितवनी उद्यम करो उठनीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत।

जाए। वेद प्राण सिमर शुद्ध आखर किन राम नामिक आखर किन का जय जी बसावै ताकि महिमा करि न आवै। कांखी एक दरस तुहारो नानकुन संग मह उदारो सुख मनि सुख मर प्रभ नाम भगत जन के मन विश्राम रहाओ। प्रभु के सिमरन गर्भ नाम बसै प्रभु के सिमरन दुख जम नसै प्रभु के सिमरन काल पर हरै प्रभु के सिमरन दुश्मन तरै। प्रभु सिमरत किच बगन ना लागै प्रभु के सिमरन दिन जागै प्रभु के सिमरन भौ ना व्यापै प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै। प्रभु के सिमरन साध कै संग सर्वदान नानक हरि रंग प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नाने प्रभु के सिमरन दरगाह माने प्रभु के सिमरन होय सो भला प्रभु के सिमरन सुफल फला। से सिमराय जनाब सिमराय नानक तां कै लागो पाए प्रभु के सिमरन सबते ऊचा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु के सिमरन सबके सुझै प्रभु के सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभु जी बसा साध की रसना नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमर से तनवंत प्रभु को सिमर से पतवंत प्रभु को सिमर से जन परवान प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान प्रभु को सिमर से बहमता दे प्रभु को सिमर से सर्व के राजे प्रभु को सिमर से सुखवासी प्रभु को सिमर सदा विनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानी जन के मंगर वाला प्रभु को सिमर से परोपकारी प्रभु को सिमर तन साध बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु के सिमरन कार्य पूरै प्रभु के सिमरन कबहु न चूरै प्रभु के सिमरन हर गुण बाने प्रभु के सिमरन सहज सुमाने प्रभु के सिमरन निश्चल आसन प्रभु के सिमरन कमल विगासन। प्रभु के सिमरन हर चुनकार सुप्रत सिमरन का अंत न पार से सिमर से जन जन को प्रमया नानक तिंजन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते प्र हर सिमरन तारी सवतरना सिमर सिमर हर कारण करना

चलाएं। जय मुस्कल हो वे अत पारी हर को नाम खिन मायो धारी अनक पुन चन कर तु नहीं तराय हर को नाम कोड़ पाप पर हराय गुरुमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे।

भाई जय मार्ग जात अकेला तरणम संग हो तो सुहेला ऐसा नाम सदा त्याये नान गुरु परम गत पाइये छूटत नाही कोट लख बाही नाम जब तै पार पराही।

तुबारखाए भगजना के वर्तन नाम संजना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदराय जन कोट हार जस कर सन दिन रात हर औख साध कमात हर जन केर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान।

परमेश्वर धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जा सुर सरस रसन बखानी सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओहो उत्तम थान नानक देखट बसे हर नाम सलोक निर्गुण आर ए अन्या सो प्रभ सदा समाल जिन किया तिस चित रख नानक निबही नाल। अस्पति रमैया के गुण

तब नानक सिज जाय। जय प्रसाद तर ऊपर सुख बसै सुत पर आत्मित बनता संग हसै। जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कामुला। जय प्रसाद भोग सब रसा सुगत समग्री संग साथ बसा दिन हस पाव करणित रसना तिसे त्याग वर संग रचना ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापै नानक काढ़ लो प्रभ आपै।

बाहर पे खंतर मल माया छप सुना कित कराय छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्याप लोभ सुवाल अंतर अगन बाहर तन स्वाह कल्पात्र कैसे तरया था जाके अंतर सह प्रव्याप नाने ते जन सह सुमात सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गया ले उड़ निभावे काम बुधारत बुद्ध डोरा निष्कय तो समझे पोरा का बसन बद का बैकुंग जतन करे तो पिशुर पांग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दिन बेनती करे नानक तुमरी कृपा चराय

अपने अमान कछबार स्वाव ले अज्ञान निमद रोस करे अपनी प्रतिता पी खोवे पर उसका विश्वास ना होवे जिसके वस्तुषा के

मेरा उपाव शरण सगल ते रहत सब जान आत्म की रहत दृपावत लड़ाए था तरंतर सुमाए सो सेव जिस कृपा करी।

जय प्रसाद सत्यमृतकाय जागर को राख मर माहे जय प्रसाद सिंह तत्न लाभ है तिसको सिमर परम गत पाव है। जय प्रसाद बसा सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद ग्रह सुख संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्या बनजोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्या कतब लुभावै। जय प्रसाद सुख सहज सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तू सबको मान मुक्ता को जस रसन बखानै।

वहै देव प्रसादरो कंचन देही लिवलावत श्राम सनेही देव प्रसाद रहत मनसो पामे हर हर जस कहत।

स्वासंग धर्मराय कर सेवा साग संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पापलायन स्वासंग मृत गुण गायन साग संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जनम साग संग नाई कचकाल दस

पदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नल जस धर्म कमला लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दो जस सुर सर्व कौ सुख

ब्रह्म ज्ञानी सगल केरे ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी के सब परमाया ब्रह्म ज्ञान तकत बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा सम दर्शे ब्रह्म

ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अवंते आगत ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद।

नंदा अदाखर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर है। ब्रह्मज्ञानी के मत कौन बखाना, ब्रह्मज्ञानी के गत ब्रह्मज्ञानी जाना, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सा जीव नहीं मरता।

अस्पदि मिथ्यानाय रसना परस मनम प्री निरंजन दर्श परतरया रूप न पेखा नेत्र साधकी टैल संसंग हेत करना सुने काहु के निंदा सबते जन आपको मंदा गुर प्रताप क्या पर हरे मन की वासना मन तय टरा इंद्रिय जल पंडो तेरा नानक ओढ़ मदे को ऐसा परस वैसनो सो जिस ऊपर सो परसान बिशन की माया ते हो भिन्न कर्म कर तो है न कर्म तिस वैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचा है केवल भगत कीर्तन संग राचा है

पंथियों का भूमि नीच में बसाए कबो सुख हर खरंग हसाए कबो नंद चंद व्यवहार कबो बकाश पयाल कबो बेता ब्रह्म विचार नानिका मिला बनार कबो नृत्य कर भोपाल कबो सोए रह दिन रात कबो महाक्रोध विकराल कबो सर्व क्यों त्रिवाल कबो होय बह राजा कबो बेखारी नीच का साजा

जावै ज्योति पावे सोई होए नाने दूजा बन को एक अबुसा संगते पावे सुस्तांत बो नयावे अंतरो ज्ञान प्रगास सुस्तन का नहीं विनाश मंतन नाम रत करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जन्मे जलाय खटाना त्यों ज्योति संग जो सुमान मिटिग गुण पाए विश्राम नानक प्रभु के साधु कुरबान सुलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अस्पति जिसके अंदर राज अभिमान है उस नरक पाती हुआ सु

छूटाए। सैस खटे लख कोड़तावे त्रुतनावे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करै न त्रुतावे खप खप मरै बिना संतोख नहि को राज जाय सुपन मनोरवृत सब का जाय। नाम रंग सर्व सुख होय बड़भागी से प्राप्त होय कनक रावन आपे आप सदा सदा नानिखर जाप कनक रावन करना हार इसके हाथ कहा बीचार जैसे दृष्ट।

सलोक तजो स्यानम सुरदनो सिमरो हर हर राय एक आसर मन रखो नानक दुख परम पाओ जायत फरी।

ज्यो मंदिर को था मैं था मंत्रो गुरका सोध मने संबंध्यो पाखा नव चर तर प्राणी गुरु चागर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर जीव अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होए बिगास।

नाम कतारे प्रिया सब पावन नाम के संग द्रव सुन सरवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नान चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतो सत सजा के बाणी सतपुरुष समय सुमाणी सात करम जाके रचना सत मूल सत सत्युपत सतकर्ण निर्मल निर्मल सब जाए तिश सब भले सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतनान गुरते पाई सत वजन सत उपदेश सत जन जा हृदय प्रवेश सत निर्दय को नाम जबता की गतो आप सत किया सब सत आप जाने अपने मत का जिसकी शीर्षो करण हर वर्ण भूज करत विचार करते कि मित जाने किया नान ज्योतिष पावे सुवर्तिया बिस्मन बिस्म पाये बिस्मा जिन बुझे तय स्वा प्रभु के रंग राज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ रहे हुए दाते दुकाटन हर जा के संग तरह संसार जन का सेव सवड़ भागी।

मैं कद राख है वसम करे लश्कर को डोलाख है जिसका स्वास्थ्य न कर ताव चा को राख देख रहा मार जतन करत भो पात जिसके करता फिर से जाट मार न राख न कोई सर्व जिया का राख सोए का है सोच करे रे प्राणी जप नानी प्रभा लखुंडानी बारिंग बार बार पर जपे पी अमृत हो मानत अंतर पी है।

रखमाना। स्वतम हित कोटम्बर बिन्तायन ते कहो तुम कवन सुनाता राजरंग माया विचारन ते कहो कवन छुटकारा सतीरा सतवारी चुटाड़म छूट पसारी जिंदिया तुझ भजना बिकना ना विचार नानक पहुँचाना गुर की मतुले याने भगत बिना बड़ू बैसने हर के भगत करो मन में निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माया जन्म जन्म के गर्व खदाए आप जपो बरा नाम जपाओ सुनो क्या द्रैत गल पाओ सार पुर सतर को नाम सहस भाई नान गुण गाओ गुण गाव तिर उतर सुमैल बृंदायो में बिग पैल हो चंद बस सुखनाथ सात गिरा सुर नाम सुमाल छाड़ सनम सगली मना सा संग पावे सह चना हर पुंजे संत करो बिह आर्या सुदर गा जयकार सर्व निरंतर एको देखो नाना जा केव सोलेख एको जप एको सला।

तीर्थदुर्गा को दाये उभरे रखनार्थ आये नृपो जपाय सकल पौ मिटाये प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाये जिस

सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार।

सर्वशास्त्र ना जाने जरूबरंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भागत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही बाह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन अनंगन प्रकाश निसन अनास आजान बाहो शाहन शाह राजान राज पानान पान देवान देवमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकार रंकारान काल अनभुत अंग अब अभंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन पर राम निर्भय निकाम प्रचन मित कथ अखंड आलस्य कर्म आदर्श धर्म सर्वापर्ण

चतुर्चक्र करता चतुर्चक्र हरता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र भरती चतुर्चक्र भरती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दान है चाचरी छंद न सत्रे न मित्र न परम न पितर न कर्मंग न गाय अजन्मंग अजाय न चित्रे न मित्र परे है पवित्र प्रतिश अधिश आदृश अग्रस भगवती छंद द्वप्रसाद कथते के आ छिज देसा के आ बिज बेसा के आ गंज कर्म के आ पंच भरम के आ बिज लोकै के आ दित सोके के भूत भरने के विभूत करने के राजंग ब्रह्मा है के धर्मंग तुझा है के आ सुख भरने के सर्वा अपरने के जगतंग कृति है के शत्रुंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुप के आद अदेव के आप अपेव के चित्रंग विहीन के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे आके के पाग बेब के गैबल गैब के अफुल गुनाह है के शाह अनुशाह है के कारण ग्रिंद के रोजी दंद के राज कर हिम के करमंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग धरी है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गाउण है के सर्वत्र भावण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्व के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीमे के प्रभंग भीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के उसन मजमु है धमाव रजु है मेसुल सलामे सलीकुद मदामे गरीबल शिकस्त है गरीबल प्रस्ता है बिलंदुल मकाने जमीनुल जमाने तमीजल तुमामे रजुल निदाने हरीफुल अजीमे रजायग यकीना है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवास है गरीबल खराज है दुर्ग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप वेदी रूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सदा में सदैव काम द्रभाष स्वरूप गाध है अनुपे ओंगा द्रुपे ना स्वरूप रंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गम त्रिभाते अगंजे अगाधे सुभंग सर्भाग्य सुसर्भा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप शिज है शूत है के नरकंग प्रणास है प्रतुल प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप प्रजुक्त अनुप है नृक् सदा है विभुक्त प्रभा है नृक् स्वरूप प्रजुक्त अनुप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है पेख है लेख है

गुनगुन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन पंगमा अपार गतमित उतार जल थल अमंड दिस जपन जल थल महन दिस बेअंतन भवना तिरथर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकार आदि कथनिया नाद खल खंड ख्याल गुरु प्रकाल कर कर प्रणाम चितर नाम अंश जगात अजना बात अन झंझ गात अंदरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार आ डीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण आनंदाता महंथर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कल खंड है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जाके कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाशे है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजप जप अथपा थप कृता कृत है मृता मृत है मृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है मृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता आमृत है नर नायक है खल गायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पपंजन है अर्गंजन है रपतापन है जब जापन है अकलं कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जसके जस है भुजंग ब्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांद रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान भोज भोजे नमो पान पान नमो कलह कर्ता नमो सांद रूपे नमो इंद्र इंद्र राधंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो भाग भंगे भंगी स्वरूपे अनंगी रामे

जिनके मन में से आ बाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा, जिन पखा सब गवाइया करसान सुख मनाए वसया, जिन शाह सब पूजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिठा जिसदियाँ ए बड़ियाइया, कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार। वाजे पन शब्द घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंड कुमारिया, दुर्गरम पाया तुद जिन गाओ से नाम अर के लागे, कहे नानक तै सुखुआ तित कर आनंद वाजे, साची लबाए बिन देह नमाणी लबै बाजो क्या करे बेचारिया, वास मरत गोहे नाही कृपा कर बनवारिया, कर कृपा गिलव कटे ज्ञान कृपा कर बनवारिया, इस नोर था।

आई। जे सतगुरु सिमरन नयन के तिमिर मिटे खेन, जे सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुरु सिमरंत जी की तप्त मिटावे, जे सतगुरु सिमरंत हृदय सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बाल भान संगत धन धन करहो, जे सतगुरु

अपिनिर्चना दुई कुदरत साजे कर असिन ठचाओ दाता करता है आप तो सुदेवे करे पसाओ तू जानो सब से दिल ऐसे जिंद को आओ करे असिन ठचाओ करे असिन ठचाओ।

मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं छत्र चमर तख्त आसन प्रचंत मूढ़ अज्ञान अंधे नानक सुफन सुपन मनोरथ माया सुपने हब रंग मानिया मिठड़ा मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूनिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने सेती चित मूर्ख लाए बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाए तंदे ताया पूर्ण भय न काम मोहया माया क्या विचारा जंत जाया पुपलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोक जितते पृथ्वी नव खंडन बसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण कौतक कोड तमासया चेतना वसना नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई था पौड़ी महाप्याणी उद्यान नगर कर मानिया झूठ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिरे देवानिया सिर लगा जम डंड तां पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिरे सैतानिया सलोक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भ गर्भ तै चंत विखिया शलंग शिदरंग नानक बिन हर संग ना चालते बिखंदड़ो की ना पुल तुम्मा दिसम सोहना अड ना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुली माया पौड़ी चल दया नाल ना चले सो क्यों संजी आए तिस का कहो क्या जतना जिस ते वंजी आए हार विसरह क्यों त्रिपतावे ना मन रंजी है प्रभु छोड़े अन लागे नरक समंजी है ओ कृपाल दयाल नानक पौ पंजी है सलोक नच राज सुख मिष्टंग नच भोग रस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग साध संग नहर नानक दास मिष्टंग प्रभ दर्शनं लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो साप सच थोक नानक मिठड़ा सो तनी पौड़ी हर बिन कछु ना लाग गई भगतन को मीठा आन सुवाद सब फीकिया कर निरनाव डीठा अग्यान परम दुख कटिया गुर भए बसीठा चरण कमल मन बेदया ज्यो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिन से सब झूठा सलोक त्यागत जलंग नह जीव मीनंग नह त्याग चात्रक मेघ मंडल है बाण वेदंच कुरुंका नादंग अल बंदन कुसुम वासन
चरण कमल रचंत संत नानके आन न रुचत मुख दिखाऊ पलक छड आन न देऊ चित जीवन संगम तिस तनी अर नानक संता मित पौड़ी ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे बूंद विहूना चात्र को क्यों कर तृपतावे नाद कुरुंके बेदिया सनमुखी उठतावे भवर लोभी कुसुम बास का मिलियाप बंधावे त्यों संत जनार प्रीत है देख दर्शकावे सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सियारद न बिसरंत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर सीतला सीतड़ा मन मजाऊ पलक नाथी वै बार शीतला मन मजाए पलक नथी वे बहरा नानक आसड़ी नवाहे सदा पिखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबहू चूरी है देहो दर्श मन चाओ लह जाए वसूरी है होए पवित्र शरीर चरणा धूरी है पार ब्रह्म गुर देव सदा हजूरी है सलोक रसनायो चरंत नाम श्रवण सुनंत शब्द अमृत नानक तिन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है हब कूड़ा वे कम इक ससाई बाहरे नानक से तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान नवावे प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सुह से हथा जन चरण पनीत पवित्र चाल प्रभ पथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी आदोत करण हर रमनंग संजोग पूर्ण गोपाल दर्शन पेटंत सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गोसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच पूजाई वड़े भाग सत संग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोविंद सर्व दोख निवारण शरण सूर भगवान जपंत नानक हर हरे हड्यो हबे छड्यो हब आप लगड़ो चरणा पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रभ बेखंदया पौड़ी मेल लहो दयाल

शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उधरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद नृपो भय मन।

पुन आठ पैर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पै दयाल ना व्यापे माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया मन तन पै संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरेक टंब संग लोग कुल सुभाया सलोक गुरु गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुर दयाल समरथ गुर गुर नानक पतति उदारण भवजल बिखम असगाहू गुर बोथ है तारियाम नानक पूरक राम सतगुर चरनी लगे आ पौड़ी तन तन गुर देव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जब पे ता अवगण सब छपे पार ब्रह्म गुर देव नीचों उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने आप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंते को सुनियंते को वर्तंते को नरहर नाम दान जाचंत नानक दयाल पुरख कृपा करे हिक सेवी हिक संवला हर इक सपैर दास नाम वखर धन संचया नानक सची दास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो सब किछ आपे आप दूजा कहां के हो।

पर ग्रह जो हन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नै सत पुरख मनायो। तावत को तावे बहुपाती, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान स्नान ना कियो, एक निमख ना कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तो खियो, नह बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं सतगुर सेव त्यायो। पंच दूता रच संगत गोसट, मतवारो मद मायो। करो बेनती साध संगत, हर भगत वचल सुन आयो। नानक भाग परयो हर पाछै, राख लाज उपनायो। टोडी महला पंजवा, मनुखा बिन बुझे बिरथा आया। अनक साज सिंगार बहु करता, जो मृत के उड़ाया रहा। ताए ताए किरपन शर्म कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा, किति ही काज न आया। खरिया वरण सुवारी से जा, कामन थाट बनाया। संग न पायो अपने परते, पेख पेख दुख पाया। सारो दिन समजूरी करता, तुहे मुछले तह तुहे मुसले शराया। खेद भयो बेगारी न्याई, कर कह काम न आया। भयो अनग्रह जांको प्रभ को, तिस हृदय नाम बसाया। साध संगत कै पाछे परयो, जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा, कृपा निद बसो हृदय हर नीत। ऐसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रा। तास तुम्हारे की पावो थूरा, मस्तक ले लावो। महापद ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आग्या तुमरी मीठी लागो, कियो त्योहारो पावो। जो तू दे तही ए त्रिपत, आण न कतहु तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी, सगल रेण होए रही है। साधु संगत होए प्राप्त, ता प्रभ अपना लही है। सदा सदा हम छोरे तुमरे, तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक तुम मात पिता।

ओंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम राम राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए बहु बिद को तावे सगल निरार्थ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो।

खात खर्चत किशन खुटत नाही। राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत आखिन भीतर अपना किया पाया। आगम निगम कहे जन नानक सब देखा लोक सुभाया। टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख पर साध संग भजन कर स्वामी ढाकन को एक हरे राव। अनक छिद्र बहुत ते छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहत तिस अरादे खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहे ओए उहां ही है तरे जोर सकत नानक किछ नाही प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा हर के चरण

तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगर न को लागै जानकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रवेक बाल बुद्ध पूर्ण सुख दाता नानक हर हर टीका टोडी महला पंजवा।

अंतरजामी सुगड़ सुजान, कोटराज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट धारो प्रभ मान, आठ पैर रसना गुण गावे जसपुर अकावे सम्राथ कान, तेरी सरना दियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान, टोडी महला पंजवा।

हाउ। दय दिस रवि राव रया जास तुम्हारा, अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कबो ना मरते चूर। दंद बंद धंद बंद बिन से माया, के साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के, बिन हर नानक जाने कूर। ढोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्यास, एक खिन रह ना सकूं बिन प्रीतम। दर्शन देखन को तारी मन आस राव, सिमरन नाम निरंजन करते, मन तन ते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते, अबनासी बिमल जां को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, कर कृपा भेटी गुणतास। सात सहज सुख मन उपजियो, कोट सूर नानक परगास। ढोडी महला पंजवा, हर हर पतत पावन, जी प्राण मान सुखदाता, अंतर जामी मन को पावन राव। सुंदर सुगुण चतुर सब बेता, रिद दास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, कर्म भूम बीजन सो खावन। बिस्मन बिस्मा भय बिस्मादा, न बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा, नानक दास सदा बल जावन। ढोडी महला पंजवा, माई माया शल, तरण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिना हड़का जल रहा। छोड़ से आनप बहु चतुराई, दुए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी, मानुख दे काहे उत्तम फल। भेद बखियान करत साधु जन, भागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक, अर सिमरन दैन भय मल। ढोडी महला पंजवा, माई चरण गुर मीठे, वड्डे भाग देवे परमेसर।

दास मन की गात कहीं ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की सुध मन्ने मुँह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पास्यों प्रगट जाए मन्ने माग न चले पंथ मन्ने तनु से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए

आखे बर में आखे इंद आख गोपी तै गोविंद आख ईसर आख सिद्ध आख केते कीते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुन जन सेव केते आख आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे ते कीते होर करे ता आख न सकह के ई के जेवड़ पावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आख बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बै सर्व संभाले वाजे नाद नेक संखा केते वामन हारे केते राग परिस्यों कहियन केते गावन हारे।

एक माई जुगत व्याई तें चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जे सुभाव है

आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एक वेश एक दूजी बो लख हो हे लख हो वह लख बीस लख लख गेड़ा आकी है एक नाम जगदीश एत राह पद पबड़िया चढ़िए होए कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा ईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मरन न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल

साहिब जी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे निमुख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जाका हर रंग लागो इस जुग में है

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संगत जीओ, जिन्ना संगत ने लंगर छक लिया, वो सारिया संगत गुरु घर दरबार हाजरियां पर हो जी, ता जो भोग शुरू होने लगे हैं। सरदार बिक्रम सिंह भुल्लर के अंतम अरदास के भोग शुरू होने हैं। सो जिन्हें संगत ने लंगर छक लिया है, गुरु घर हाजरियां भरो जी, भोग शुरू होने लगे ने। सरदार बिक्रम सिंह भुल्लर जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी,

एक भगत भगवान जय प्राणी कै नाय मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताय तना।

संगोचरहि प्रथम भैरवे बिलाव ले पुनिया की गावे बंगले पुण्य सुले की पै भारी है पैरों की पांचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावह बंगाल मध माधव गावह ललित बिलावल गावे अपने अपने पात अष्टभद्र भैरव के गावे गायन पात्र दुत

अष्टपदे रमैया के गुण चेत पराने कवन मूलते कवन दिष्टाने जिन तू सा सिवार सिगारिया गर्भ अगण मैं जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूदे बिरध पया उपर सख सैन मुख प्याऊ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु ना बुझै बख्श लिहो तो नानक सीजै जे परसा तर उपर सुख बसै सुत प्रात मीत बनंता संग हसै जे प्रसाद पीव शीतल जला सुखदाई पवन पावका मला जे प्रसाद पुगे सब रसा सगल समग्री सांग सत बसा दीने हस्पग नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड़ंत व्यापी नानक काट देहो प्रव्यापी आदंत जो राखन हारी तिस्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नम निद पावी तां स्यों मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सा सदा हजूरी तांको अंदा जान तदूरे जांकी टल पावे दरगा मान तसे बसारे मुगदा जान सदा सदा यो पूलन हारे नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौटी संग रचे छा छोड़ झूठ संग मचे जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो हो मनसो दूर पराने छोड़ जाए तिसका शर्म करी संग सहाई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तुए गर्द प्रीत पसम संग हुए अंध कु मैं तित बिकराले नानक काट लिहो प्रभ दयाले करतूत पशु की मानस जाते लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नहीं किस करे सपाया बाहर ज्ञान त्यान इशनाने अंतर व्यापे लोभ सवान अंतर यगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कस तरे अथाह जां कै अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुने अंदा कैसे मार्ग पावी कर गै लेहोड़ निबहावी कहां बुजारत बूजे डोरा निस्कहिया तो समझै पूरा कहां बिसनपद गावे गोंग जतन कराए तो भी सरभंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो आउस गमने करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग साई सु आवे ना चीत जो बराई तांसे उपरीत बलुआ के ग्रह पीतर बसे आनंद कील माया रंग रसे दिर कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार मां लोभ त्रोह याहू जगत बहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकर तुम प्यार दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरा

आवत जावत जन्मै मरै, जिसकै अंतरे बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करतन बेड़ा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रात, सबके जाने आत्म की रात। जिस भावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ सरनागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद, शति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माए। जे प्रसाद गंतत तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस पोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पट पनबर हंडावे, तिसे त्या कतावर लबावे। जे प्रसाद सुख से सोई जे, मन आठ पैर तंका जस गविजै। जे प्रसाद तुझ सब को माने, मुक्ता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तिर रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जब दर गै मन पावे, नानक पत सेती कर जावे। जे प्रसाद अरो कंचन देहि, लिवला वोहु तिस राम सनेह। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहते, मन सुख पावे हर हर जस कैते। जे प्रसाद तिर सगल सिद्ध ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताकै। जे प्रसाद तुझ को ना पहुंचे, मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे। जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपूखण पैरी जे, मन तिस सिमरत को आलस की जै। जे प्रसाद है सवहस्त सवारी, मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारे। जे प्रसाद बग मिलख तना, राख परोई प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बरसा तिसे त्याए। तिसे त्याए जो एका लखे, ईहा ऊहा नानक तेरी रखे। जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को सासा चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरे नेकी जाति, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद सुनहे करनाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलहे, जे प्रसाद सपूरन फलहे। जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागू, गुर प्रसाद नानक मन जागू। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल ना मनहो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे

आप जपे जप सोए, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते हो प्रगास, प्रभ दया ते कमल विगास, प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्म निदान प्रभ तेरी मया, आप कछु न किन्हू लया, जिजित लाभ हो तित लग है हर नाथ, नानक कह कछु न हाथ। सलोके अगम गाद पर ब्रह्म सोई, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की चर्ज कथा अष्टपदी। साध के संगी मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाया अभिमान, साध के संग प्रगटे सुग्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की मैं मां बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समाणी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फूले। साध के संग आवी बस पंचा, साध संग अमृत रस पूंचा। साध संग हुई सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग ना कतहु तावी, साध संग स्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सुपरसन। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापनीत। साध संग के सिओ नहीं बैरी, साध के संग ना बीगा पैर। साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आए। साध के संग ना कबहू तावे, साध के संग ना सदा सुख पावे। साध संग बसता गोचर लहे, साध के संग अजर सहे। साध के संग बसे थन ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै करबाण। साध के संग सब कुल उदारी, साध संग साजन मीत कटंब निस्तारे। साधु के संग सो तन पावे, जिस तन को सब को बरसावे। साध संग धर्म राय करी सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथन गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं किस काल, दर्शन पेट तहूत निहाल। साध के संग कलूकत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग आउआ सहेला, साध संग बिसरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साधरित बसाए, सा नानक उदरे सासों रसे। साध के संग सुन्यो हर नाओ, साध के संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन ते बिसराए, साध संग सर पर नस्तरै। साध के संग लागे परम मीठा, साधु के संग कट कट डीठा। साध संग पे आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संयोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तै गुण ते दूरी, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। सलोके मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेखे एक बिन कोई। नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख, जैसे सूर सर्व को सोख।

का नहीं अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी कुछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसे, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।

ज्ञानी सुफल फलां। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उतारी, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंगी, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम पधारी, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागती, ब्रह्म ज्ञानी अबंध त्यागते। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म

परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी कौन जाने पेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अताखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

लखे न जाय पर ब्रह्म कै रंग, जैसी मादी तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारा वारी, नानक रचना प्रभ रची बहुविधानक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पजारी, कई कोट अचार बिहारी, कई कोट पए तीर्थ वासी, कई कोट मन भरमै उदासी, कई कोट वेद के सरोते, कई कोट तपीशर होते,

परगास कई कोट तत के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवैन अमर पे सद सद ही जीवैन कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सहज समावे अपने जन को सत सत समारे नानको परमेश्वर के प्यारे सलोक करन करन प्रभ एक है दूसर नाई कोई नानक तिस बलहार नै जल थले महियल सोए अष्टपदी करन।

सो सेवकों किस तै डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य मैं आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजया गुर प्रसाद तत् सब बूझया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोया स्थूल ना किस जन्म ना किस मर आपन चलते आप ही कर आमन जामन दृष्ट अन दृष्टि आज्ञाकारी तारी सब सिष्ट आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत राज थाप उथाप अबनासी नाही किस खांडे तारन तारे हो ब्रह्मांडे अलख आपे पुरख परताप आप जपाए तन नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसोभावंत सगल संसार उदरे तन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारन प्रभ के सेवक दुख बसारन आपे मिल ले कृपाल गुर का सब जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करे वड पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किश करे सुप्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुबह होवे सो होए करने हार पिछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिते उपजे ते समाहे समाये ओए सुखनदान उन्हों बन आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला परपूर प्रभ बिरथा जान नहारे जा कै सिमरन उदरिया नानक तिस बलहार अष्टपदे टूटी गंड नहार गपाल सर्व जी आपे पितपाल सल के चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिस बनाई तेरे किस काम गत नानक जपे हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की ज्योत सगल कट सोहे तनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किस तिस का

पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ जप जप जीवा नानक हर नाऊ नाम के तारी सगले जंते नाम के तारी खंड ब्रह्मांड नाम के तारी सिमरत वेद पुराण नाम के तारी सुनन ज्ञान त्यान नाम के तारी अगास पताल नाम के तारी सगलाकार नाम के तारी पूरियां सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जांका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जांकी बाणी सत पुरख सब महे समाणी सत्य कर्म जांके रचना साते मूल सत सत उत्पाते सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश साते जन जांके हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत की आ सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके श्रेष्ठ सुकरन हारे अवर ना बूझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हारे जां कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड पागे जन कै संग एक लिव लागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यामनहार आप सत सत सब तारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सूरत सत सत जा सुनता बूजन हर को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप दे जिन मान्या करन करम तिन मूल पछान्या जा के हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरपउ हुए बसाना जेते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहे ला बस्त गडाई तां को पिन न कहना जाए बूझे बूजन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन प्रतीत ठाकुर के सेवक निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारी नानक सो सेवक सा सा

संत जना मिल करहु विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर पवसा मीत बसारु, चरण कमल रिद मैं उरतारु। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत। ए तन संचो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आसरा को मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुंट उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिसो बाक करे पलि करनी, सासो बापज हर की सरनी। अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवख दलाए।

उपजा चाऊ साध कह संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिबलाग वडपागी जपया प्रभ सुई नानक नाम रते सुख हुई सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हुयो दयाले सेव किन्नो सदा निहाले बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दुख परम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी राव रहा सतसंग हजूरी जिसका सातन लिया मलाई नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरा जे काल ना पाने सो क्यों बिसरा जो किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरा जो जीवन जिया सो क्यों बिसरा जो अगन मैं राखे गुर प्रसाद कुबिर ला लाखे सो क्यों बिसरा जै बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे गुर पूरे तते हे बजाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ए काम आप त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो भगत पाई तरिया संसार बिन भगती तन होसी सार सर्व कल्याण सुख निध नाम।

ना जापत, तब हरख सो कौ किसे व्याप्त। जबे आपने आप पर ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। आपन खेल आवरती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होत प्रभ केवल तणि, तब बंद मुक्त कहूं किस को गणी। जब एक के हर अगमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहूं कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत तरै, तब कवन निडर कवन कत डर। आपन चल तप करने हार, नानक ठाकरे अगमा पार। अविनाशी सुखे अपने आसन, तै जन्म मरण कहूं कहां विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोई, तब जम की त्रास कहूं किश होई। जब अभिगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किश पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जा निर्मल पुरख पुरख पत होता, तै बिन मैल कहूं क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छदर लगत कहूं केस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तै किसे पूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हारे, नानक करते का नहीं सुमार। जबे अपनी शोभा अपन संग बनाए, तब कौन माई बाप मित्र सुत पाए। जय सर्व कला पे परवीन, तै वेद कतेब कहा कोचीन। जबे अपने आप उतारे, तो सगन अप सगन कहा विचारे। जय अपने ऊच अपने आपे नेरा, तै कौन ठाकर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्मर हे बिस्माद, नानके अपनी गत जानो आप। जय अचल अछेद अपेद समाया, ऊहा किसे व्याप्त माया। आपस को आपे आदेश, तै गुण का ना ही परवेश। जय एक है एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप त्यारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जाप रचियो पर पंचाकार, तै गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुण तै पई कहावते, कौ नरक कौ सर्ग बसावत। आल जंजाल माया जंजाल, होमे मोह परम पैपार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै, खेल सकोचे तो नानक एकै। जा विगते भगतै आप, जा पसरै पसार संत प्रताप। दुहु पाका आपे तनी, उनकी शोभा उन्हों बने। आपे कौत करे नंद चोज, आपे रस पोगन नरजोग। जिस पावे तिस आपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल खलावे। बेसमारा थाग नत्ता तोलै, ज्यों बुलावो तो नानक दास बोलै। सलोक जे जंत के ठाकरा, आपे वर्तन हारे। नानके को पसरिया, दूजा कै दृष्टारे। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जां तिस पावे तां सिष्ट उपाय, अपने पाणे लए समाए। तुम ते पिंड नहीं किस हुए, आपन सुत सब जगत परोए। जां को प्रभ जीओ आप बजाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत्का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता। जे जंतर सब ता कह हाथे, दीन दयाला नाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोए ना मारे, सो मुआ जिस मनो बसारे। ते तजे अवरे कहां को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जे के जुग जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण दान बेअंता पार, नानक दास सदा बलहार। पूरन पूर हे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाले जियन बहु पाते, जो जो रच सुत से त्यात। जिस पावे तिस लय मलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जान्या। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवको सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाका मन
बसया निरंकार बंधन तोड़ पे निर्वारे आंधन पूजे गुर के पैर ए लोग सुखिए पर लोग सहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंदे गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सवाओ आठ पैर प्रपी खूनेरा मिटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दुए लिहो सवारे राम नाम अंतरे उतारे पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परिखिया मन तन नाम जपो लिबलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगा निबहे खी पतमारी एका टेक रखो मन माए नानक बहुर न आवि जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार त्याए निरपौ जपे सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छूटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुखे नाम जपते मन होवत सुख चिंता जाए मिटै हंकार ते जन को कोई न पहुंचन हार सिरे उपर थाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन प्रेत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सुहोत निहाले ताके निकट न आवत काले अमर पे अमरा पद पाया साध संग नानक हर

लाए कौन निकटे कौन कहिया दूरे आपे आप पर पूरे अंतर गज से आप जनाए नानक ते जन आप बजाए सर्ब पूते आप वरतारा सर्ब नाने आपेखन हारा सगल समगरी जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जाने एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब के मध्य अलपतो रहे जोग चकैना सो आपे कहे आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे तां ले समाए इस्ते हुए सुना ही बुरा उरे कहो किने किस करा।

ताकि गत मित कही न जाई, दूसर होय ता सोजी पाए, तिसका किया सा परवाने, गुर प्रसाद नानके जान, जो जाने ते सदा सुख हुए, आप मिलाए ले प्रभ सोए, ओ तनवंते कलवंते पतवंते, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंते, तन तन तन जन आया, जिस गुर प्रसाद सब जगत तराया, जन आमन का यह स्वाओ, जान कह संग चिते आवे नाउ, आप मुक्ति मुक्त करे संसार, नानक ते जन को

अष्टपदी पूरे गुरु का सुना उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतराय चेंदे आस अनंत त्यागो तरंग संत जना की तूड़ मन मांगे आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरह हर तन के पर लेहो भंडारे नानक गुर पूरा नमस्कारे खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित बहु नारायण एक एक रूप जां कै रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साधके बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत आधारे आप तरे लोके निस्तारे सफल जिन सफलता का संग जा कै मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिन कै साथी सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रैन अमृत नाम साध संग लैन सुपरसन पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते राते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दे आप प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तते करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमणि सह जग बिंद गुण नाम जिस मन बसा सोहोत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊचे पाए स्थान बहुर ना होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान शिष्ट उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक के नाम बचन मन सुने एहो निदान जपे मन कोई सब जुग मैं ताकी गत हुई गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छूटे जाके मस्त करम प्रभ पाई साध सरन नानक ते आई।